0: So the name of the raga is Kedar. In the North Indian or Hindustani tradition, in the South Indian or Carnatic tradition, it would be known as Hamir Kalyani. And actually, there's a pretty nice reason why it's called Hamir Kalyani. Because there is Hamir in the North Indian tradition as Kalyan, and Hamir Kalyani and Kedar, the two of them would be the same. All right, let's get Khurshid Anwar on board to tell us a little bit more about this raga.
1: Ab hum Kalyan Thaat ke un ragon ko lete hain, जिनमें दोनों मध्यम लगाए जाते हैं और जिनमें तीव्र मध्यम की जगह शुद्ध मध्यम ज्यादा इस्तेमाल होता है. इन रागों में तीव्र मध्यम को हमेशा आरोह की शक्ल में पंचम के साथ मिलाकर लगाया जाता है. इसीलिए मापा धापा का टुकड़ा आपको इनमें से अक्सर रागों में मिलेगा. इन रागों के आरोह में निखाद और अवरोह में गंधार दुर्बल यानी कमजोर रहते हैं और इन दोनों सुरों को अक्सर अपनी जगह से हटाकर वक्र रूप में लगाया जाता है. इस तरह

साथ लगाया जाता है। वादी सुर शुद्ध मध्यम और संवादी खरज है। गाने का वक्त रात का पहला पहर। इस राग का आरोह करते वक्त एकदम खर्च से मध्यम पर जाते और अच्छे गाने वाले मध्यम से आगे बढ़ते हुए गंधार का हल्का सा कन भी दे जाते। किदारे के अवरोह में कभी कभी दोनों मध्यम एक के बाद एक ऊपर तले लगाए जाते और कुछ गायक धेवत के साथ कोमल निखार भी अवरोह में इस्तेमाल करते हैं। पकड़ सामा मा गापा मापा धापा मा आरोह सामा मा गापा धापा निधासा अवरोह सा निधापा मापा धापा मा गा मारे सा।